ऐतिहासिक साधनसभा एकजुट सत्रहत्तर एकता भूमि भूमि राष्ट्रीय जनमुक्ति 33 निर्वाचन परिषद जिला 32

नमस्कार ज्ञान सात बजे को समाचार में तपाईलाई स्वागत छ मोहन कुमार समाचार का मुख्य मुख्य शीर्षक विश्व वातावरण दिवस प्रक्रिया में अंतरक्रिया बंद तथा वातावरण संरक्षण में कारण पालन करना द्वारा बर्दिया का दुई नगरपालिक विपद प्रति कार्य का लगी 10 लाख बड़ी उत्तरा सुना हस्तांतरण वन्य जंतु को जोखिम बोले विद्यालय जाते पार प्रक्रिया थकैला का विद्यार्थी नौबस्ता कारागार सड़क पची 30 कैदी विभिन्न कारागार में स्थानांतरण को सीमा विवाद चरणबद्ध रूप में समाधान करने सभापति लालू चाहे दावी चौथौ विश्व वातावरण दिवस को अवसर में डिवीजन वन कार्यालय प्रक्रिया ने हिजो संचार कर्मीसंग अंतरक्रिया कार्यक्रम को आयोजना वातावरण तथा प्रकृति संरक्षण संबंधी जनचेतना अभिवृद्धि करते वन वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत को संरक्षण में योगदान पुर्याने उद्देश्य कार्यक्रम कर सन् 1973 देखि मनाउन शुरू गरिएको विश्व वातावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जुन 5 मा मनाइने गरिन्छ। यस वर्ष 54 संस्करणको रूपमा मनाइँदै आएको दिवसका अवसरमा नेपालमा देखिएका वातावरणीय चुनौतीहरू बारे पनि छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर व्यवस्थापनको समस्या, बाँकेमास, पारिस्थितिक प्रणालीमा खरल, नदी तथा सिमसार क्षेत्र सुक्ने र पुरिने अवस्था साथै जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणका कारण उत्पन्न समस्याबारे जानकारी गराएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजय राज सुवेदीले संचार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै समुदाय स्तरमा जनचेतना फैलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले वन संरक्षण ऐन 2076 वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 वन ऐन 2076 वन्य जन्तु मैत्री प्रवर्धन निर्माण निर्देशिका 2078 तथा वन नियमावली 2079 प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वन क्रियाको आरम्भ गरेर नगरपालिकालाई पारि तथा नदी सन्

0: अपने पूरे मार्ग से थे, विशेष करके शर्तन मार्ग से करें किसान के रास्ते तो इस तरह सरकार वगैरह किसान कर दे सके तो खासे को जो सेटेलाइट लेके थे अपने पूरे मार्ग से अपना करें तो किसान को स्वतंत्र ना करना के लिए
1: हमारा दूसरे की कहा से करने किसान का

आवेदन मेरा पिता समर साथ मेरा विश्वास के प्रदेश से संचालित हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। हम अपना कार्यक्रम में आज हम सब बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय नगर पालिका ट्रांस राष्ट्रीय बाजार में अवस्थित वर्ष एकमेट सेंटर के संचालक तथा राष्ट्रीय वार्ड नंबर छह के पूर्व वड़ा अध्यक्ष के रूप में दर्शक कुमार जी ने आज हमें विशेष करके महासंघ धार्मिक बिहार के विषय में खेती किसानी कर रहा के किसानों के विषय में हमने बातचीत बताई। ये कार्यक्रम संचालन संगे आज हमारा कार्यक्रम के निर्धारित समय के बनाई मनुष्य अपन बेला हमारा कार्यक्रम सुनने के अपने ढेर से धन्यवाद की प्राथमिक स्तरीय विशेष विशेष धन्यवाद दी थी। मैं कार्यक्रम संचालक अनुसूची राज

0: दीदी, हमके नेपाल के ट्रेनर तो पूरा टूस पड़त बड़ा ढेर खाना लागत हो, हमके पूरा दिन सक रहे
1: तो काहे चिंता कर।
0: पाँच मिनट कुछ ऐसी

0: प्रत्याशी को प्रत्याशी किया गया परिश्रम प्रस्तुत भगवान उसको सदन
1: अगर ये

साथी को दबाब आपको सपना को पक्ष मान करें लागू पदार्थ लागू पदार्थ टाड़ा बसौ स्वस्थ रजालो भविष्य रोजौ रेडियो पूर्वाभ्यास को सहकारी में स्वास्थ्य।

0: शरीर स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी की बद्धता घटी, व्यावहारिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में वृद्धि, यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरफा का कौशल्य अस्पताल भाषकड़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करती।
1: अस्पताल से तेजी में सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैसी था।
0: प्रत्येक दिन नशा तथा निम्न सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब को सेवा उपलब्ध भा पैरालाइसिस को मुगा बिना नशा दाखिलक हाथ द्वारा निचलना बिरमेरूपन क्लास फिजियोथेरापी तथा एकुपेंचर थेरापी विधि बसे उपचार कैसे था।
0: नशा दबिल बिरमेरूपन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेंचर थेरापी से सफल उपचार कर दे।
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था करेगा। असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक उपन सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगा। कौशल्य अस्पताल प्रणाली भाषाली शाखा 5 बासगढ़ी बर्दिया तुरंत पेट्रोल पंप दक्षिण पाजल
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बासगढ़ी बर्दिया सचिव नेटवर्क 11 14 मध्य।

0: जिसका भी हम काटे की बात और सारे नागरिक एक और महिला अनाथ बाल बालिका अपांग और ज्येष्ठ नागरिक होकर सेवा में 10% छूट के व्यवस्था के बाद कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी पर दिया प्राण पेट्रोल पंप दक्षिण पांडर
1: संपर्क फोन नंबर 084400192 वो 084400210 बांसगढ़ी पर दिया संसदीय फोन 11 14

0: मौसम विज्ञान विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान अनुसार नैनियो को प्रभाव का कारण मनसून ढिलो आन सकता बरसात कम हो सकता लाभ सुखा अवधि रहन सकता।
1: त्यसैले किसान दाजुभाइ दिदी बहिनी हो अब पानी बचाउने धान खेती अपनाऊ
0: धान छर्ने र रोप्ने योजना पानी अनुसार बनाऊ।

0: ऐसे रासायनिक मल में यूरिया डीएपी पोटास और मेरी इन कलाओं के बिना विशाल भी पशु पंछी ऐसी औषधि प्रचार करते
1: खास करके किसान शुभ क्षेत्र के सार्वजनिक पुस्तकालय।

0: कुछ पढ़ाइया वो सब कुछ सब दिखा नहीं दिया था
1: जितना होती भी होता था सभी का दिया था
0: Thank you.

0: स्वामी अर्थात रक्ता पतादे पड़वा रक्ता पतादे से सदा कटकरा हो लगा तो कोयला अनुहार की कमी हो पढ़ाई में ध्यान दीजिए समस्या लग लग
1: रक्ता पता में से बहुत अत्याक कायर साग पात दाल गुरी जरा आरा मच्छी सितार वो फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकारी हो स्वास्थ्य कार्य बढ़िया ऐसी जनहित को जारी संदेश
1: आवाज रेडियो गुरुबाबा एफएम 107.8।

ध्यान छोटा देखी स्वच्छता मूलक कार्यक्रम संचालन करने नगर पालिका सहित नियमित निकाय से समन्वय के आवश्यक बजे तथा कार्यक्रम को लाभ पहल करना तथा विकास साधन सभा में सहभागी उपभोक्ताओं का सेवा विस्तार को संग नियमित स्वच्छ व पर्याप्त खाने पानी आपूर्ति में जोड़ दे समिति उपभोक्ता का सुझाव कार्य योजना में सदस्य सेवा गुणस्तर

0: ஜெயிக்கிறதுக்கு பரமபுத்திரா கொள்கையிலே சந்தோஷமாக கொள்கையிலே சர்வகர்மலாக அதை பண்ணி சமூகத்தை
1: संचालित राजपुर सिंचाई योजना का पुनरुत्थान तथा आधुनिकीकरण कार्य आगे बढ़ेगा क्रम वातावरणीय प्राइस प्रसाद संकलन तैयारी वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 अनुसार प्रारंभिक वातावरणीय परीक्षण आईई प्रतिवेदन तैयारी का शुद्ध सार्वजनिक सुनवाई आईटी स्थानीय सरकार द्वारा भविष्य सुझाव निरख रो कार्यक्रम जन प्रतिनिधि खुला पानी समिति वनपुरता समूह सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती वन डिवीजन वन कार्यालय वर्गीय वर्गीय राष्ट्रीय निकुंज सिंचाई विभाग प्रदेश निकाय का सहभागीकरण द्वारा सहभागी निर्माण का क्रम में वहां तथा पूर्व संचालन द्वारा पूर्व वैकल्पिक डायपोषण व्यवस्था कला वन जंतु तथा पशुपन सफाई से बालू में बिना छेटी नवीकरण कर तथा वन जंतु मल्टी संरचना निर्माण का सुझाव के बाद संघार प्रतिशन में सामग्री हटाकर महान सुधार सामुदायिक प्रमोशन समन्वय विवरण तथा नियंत्रण तथा कानूनी प्रावधान का पूर्व पालना का अपना लगायत का बारह बजे सुझाव प्रस्तुत कर योजना अंतर्गत परिपूर्ण कपड़ा मनाव खरी चंदन पूर्व कोहली तैयार नाला तथा पांच सिंचाई प्रणाली का सुधार आयोजना प्रमुख के अनुसार प्राप्त सुझाव आईईई का प्रतिवेदन में समावेश करेगा स्वीकृति पाँच कार्यान्वयन कई जिला चले गए यह आयोजना में से 14,501 खर्च हुए प्रत्यक्ष लाभ ने बिना बाध से 1,140.20 प्रति किलोमीटर में हर संजाल निर्माण तथा स्थानीय करना विक्रम राय जानकार देवदात उर्वर कृषि क्षेत्र को परिचित राजापुर गेवा सिंचाई पूर्वाधार विस्तार संघ उत्पादन वृद्धि बिना अपेक्षा किसान में पूर्वा सफल आगे बढ़ा का कृषि स्थान की पूर्णा स्थानांतरण करना तैयारी अंतिम चरण में पुकरगा कृषि सार संरक्षण क्षेत्र शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज से 18 तो कृषि सार रत्नगर नगर पालिका नाम टिकली स्थित संरक्षण केन्द्र में लाई जाए को वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी प्राथमिकता के देवक पाच 7 वर्ष आगे शुरू होना अभियान कार्यान्वयन का चरण में पुकड़ा को नगर प्रमुख प्रकाश सात प्रकार के अनुसार टिकली में आवश्यक पूर्वधार निर्माण पर आवश्यक चलने बाद पहला चरण में 12 भाले के 18 कृष्ण सामने जिला बाटो से केन्द्र निर्माण में करीब 13 करोड़ रूपया खर्च हो सकता पंच कन्या सामुदायिक पुनः 18 हेक्टर क्षेत्र में दरबार खास मैदान और पीठों पोखरी निर्माण करने का डिवीजन बन कार्य चितवन का प्रमुख कृष्ण प्रसाद आचार्य का अनुसार स्थानांतरण का अंतिम काम के अलावा 129 करोड़ व्यवस्थापन का पूर्ण देख करना नेपाल में संरक्षित तथा मुख्य प्रजाति कृष्ण प्रसाद का संख्या संरक्षण प्रयास पाँच भर का हाल 500 तथा वातावरण मंत्रालय चलेगा घंटे पर सैनिक मूल अभाव से पांच किसान बुकर मलपिना थाना ब्याधर बात्री बाटर देवा गांव पालिका सनोरंजा का 45 वर्षीय समूह थारू मल निपाई पाँच एक वर्ष मलपिना ब्याधर बात्री बाटर सरकारी ठाकरे समेत मल निपाई पाँच ब्याह तैयारी कर पर्वत महासुभाष वहां के अनुसार एक बीघा जमीन में खेती कर करीब 5 पुरा 10 पुरा यूरिया आवश्यक पत्र कैलत वर्ष 1 पुरा 3 सोना बाटो पर्ण अवस्था सात कट्ठा सरकार ठेक्का तथा अठियाली करीब 4.5 बीघा खेती कर दिया बाट उसे कपड़िया पाल गांव पालिका छ किसान जगत उठाने के मुनाफा के कारण मल बिना प्याज हरवत पटरी बाट समय में आवश्यक मल पहले से उत्पादन सहज बिना किसान उपलब्ध कराएगा कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड शाखा कार्य पर्दा का प्रबंधक दिनेश थोड़ा के अनुसार हाल गोदाम में 244 मेट्रिक टन यूरिया और 309 मेट्रिक टन डीएपी मदसे बिक्री तलाक प्रदेश में से 38 अन्य वर्ष 5,500 मेट्रिक टन यूरिया 3,000 मेट्रिक टन डीएपी और 100 मेट्रिक टन पोटास बिक्री घोषणाकरण जानकारी के बाद उसी का ट्रेडिंग और परिसर प्रक्रिया जनसंख्या अनुसार नाक का करीब 30% मल विचरण होने व्यवस्था में मल फिर होना आशी उत्तीर्ण पर्याय अपेक्षाकृत 2000 वार्षिक रूप में करीब 12,000 मेट्रिक टन यूरिया 7,000 मेट्रिक टन डीपी और 1,000 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पड़ना अनुमान एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्य पर्याय कृषि प्रसार अधिकृत सीती राम प्रभाव का अनुसार धान बाड़ी प्रभाव कीमत 9,519 मेट्रिक टन यूरिया 3,256 मेट्रिक टन डीएपी 3,500 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर हाल जिला में करीब 50% रासायनिक मल आपूर्ति भेटे जिसके कारण किसान का समय में उत्पादन कर कठिनाई भोगे आज समाचार विशेष अपना प्रश्न सरकार और पश्चिम बजार आज मंगल पानी का उत्तर नंबर 3 तिरवा का विश्वनाथ खान का प्रश्न लेकर बाटी
2: किस तरह

सभासद हमारा सुन्दी पार्टी एवं समाचार समाचार कक्ष का सकुशाध्यक्ष मूल्यां रविशंकर चंद्र मानस सदस्य प्रिय बिंदु और कुमार प्रतिभा

निर्वाचन आधिकारिक पवन कुमार भट्टराईले सीआईएमलाई जानकारी दिनुभयो।

किसी किसान आत्महत्या संबंधी सुन सुना व्यवहार देखे तो पत्रिका में उल्लेख

0: ये करो दसरा सत्तरी प्रतिशत अनुदान में 30 प्रतिशत सरकारी की प्रणाली रहे व्यवस्थापक महेन्द्र कुमार चौधरी बताओ
1: सबा पैला हमी किसान लोकमा उपलब्ध कराने पी हमी अथा देखे कार्यक्रम वितरण करने योजना बना
0: सरकारी में 1288 सदस्य जिसमें 1211 महिला रहता स्थानीय महिला आर्थिक गतिविधि में जोड़ने काम उद्योग माता उत्पादित द्वारा शुरू में स्थानीय किसान प्राथमिकता का साथ वितरण कर अन्य ठाव योजना रहे संस्था की अध्यक्ष बबिता जैमी चौधरी

अनुसन्धान अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश

सत्वित खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान मदिरा में जेतु न रही, तनाव नियंत्रण करी, आज निर्णय पानी जीवन अंतराल निसर्ग रोगों से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई।

खाने, अन्न बेला पनि साग सब्जी फलफूल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चाहरूमा तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी थिए।